0: थायो आरोनि दादाक सिदा खलायै नरकनो खना रिजाबनाय जों उकुलंनि कथमार सानानि थाखायगे नायनायानो हेलो हेलो हेलो हेलो जो उनकलोग बखागो तुमुंनो नाय नायगेंगे उनकलोगनि कथमाबो जों जिनि इस्री हिराबतिनि थानि मतायर बबहाय खलायै हिरा सिनि इस्री तुकु तै तुकुना थांतनि बबहाय खलायै मतायर चुबासु सानका कायसे मिसिप बाय रिफ्रेक जागै आरो बिनि खाजानि रिसा बाय खलबै मोदायरगन बानजिरि माने जों नुगजागौ हेलो हेलो अबहाय खेलायै जों देखायसे बखाखो तुमुनो सानना थाखायगे पुलानि सिमिनाव जों पुला पुला सिनि बरं बुनां महाराजा श्री कृष्ण किशोर पुला जों उदयपुरो जों नुकमानि मोदाय खालायजाकमानि दाबुबो दंख' आबुनि नुकमारि र हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: खोनाय
1: खोनायदा
0: दाखौ खोनाकारमुं सानो जों दिनै उलनि जराव नरकबाय गोरोंनाय सालगामा बान्दाव दिनै जों नरकनो दारक सिदा खालायै खारजि देरनो नरकनो खोनारिनाय आबुनि बिसिंनि जे जेरिनायजोंनाय रक अबरंनो बेलेखिनो हामबाय दाखौ घ अकरानो अबहाय खालायै जों नगो द्रोग द्रोग खालायै जिनि मोताय रिजाबमानि आबुनि यागुल महाराजा श्री कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर ब खयरपुरनि गोजाम हाबेलिब हिनि जे सिनिजाखो दंमानि आरो अमतायनो सेवै तुबौ हिनि सेवै तुबौै अर मोताय खालायजाकमानि जों तुमुनो सानानि थांगा हिगेंगे जों गोजाम जे सिनि श्रि सिदिनि जत्तनि गोजाम बिजाब तुमुनो नायखायगे जों अ जिबरि मोतायनि जे बिजाब मानमानि आबुनि तै जिनि श्रि सिदिनि जे मुकुमुबा यारों आबुनो जों नायदुगै मानो तै दाबुबो अर सिनि पुला सिनि कक थायबाय जिनि कक थायबाय मोताय रिजाकमानि जे जिनि कक थायबाय न जे बिजाब सैजाक जों नुगौ अबहाय खालायै जों जिनि जिब्रै मोताय खालायमानि जों नुगजागै दङ अबनि लाइबिमा जों सिलायान

0: हेलो बरम गोनां ताखुंद लामसगो चिनतिनिनि अपान्दाबो ताखु खनायमान दंनाबोला ना
1: खनायमानै दङ खुलुमका जत खनाय दंनाय ताखु प्राय बखुसंनो कसा महाबिलि खयपुरनि सिमि खाथिमतायनि जत जतन खाका हाम हांदमं ताय खुलुम गियाफर आं किशोर

0: दाखू भगमानि गेजें आसों जरा नरक दादाक्सिदा खालायै नरकनि दाखुख बरम गोनां किशोर मताय खर कचाम हाबेले एबखेब खयर पुरो थांगै मताय रिमानि दादाक्सिदा नरनक खनारिजाक अजराव जों सालकामा पांदाव ब जिनि सालकामा पांदाव जों अखारचि तेरनो तुइनो कक्लाम सालायन तामिहेके मतायनो तुयै जों जेरै जथरै थाजिङ बसाखा जिनि बरम गोनां महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य पैला उदयपुरनि जिनि अर खयरपुर मताय सेवै तुबै माने आबुनि आगल फियाबा आगतलाव जिनि अ आउलिव जेफ्रु सेवै तु जाग राजाफर आफ्रु अ मतायनो आरन काबै फायो दे लगिब तुबु जागले आहने जों उदयपुरनि रांगामाटिनि जे मताय आरो थांगै नायखाहिंगै जों नुगो आरोबो आरो हिंगे गुमति तैमाव थांगै तैतु करि जागमानि तुमुन केबो केबो आमा तिरफ्रे सुन्दरिन खुलुमनानै थागाहिंगै उदयपुरनि राजा खर्नब बेरायै नायै फायमानो दे आरो निसिमि आरो जेफ्रु पुइला खालायजागो आरोनि जे खार्चि मताय रिजाकमानि थाय र दाबुब नुगजागै दंख' जों 1760 ख्रीष्टाव महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्यन जों कचाम हाबिलिव अ मतायन उदयपुरनि तुबुजागो हिने साजागै दङ फियाबा जिनि आबुनि सिलाय सिगां जिनि त्रिलोचन महाराजा त्रिलोचननि सिमिन अमताय खालायजागै फायै दङ इस्रि हिराबतिनि याग्रमै अजरा ककदो फायजाग नायनायलायनो हेल' फुंगाहाम ताखुनो लामसगो जिनि दिनैनि सालकामा पान्दाव खार्चि मतायनि खार्चि तेरनि पाइपलाइया हामजाक मुं याफारो ते खुलुमु याफारो दिनैनि खार्चि मतायनि न तैन जों कक्लाम सालाय दङ ते आसक जरा नरग दादाक सिदा खालायै खोनालायखा जिनि दाखुख सगैजाक दाखुख किशोर दाखुनि सिनो मुं दाखुनो बेलेखिनो हामबाय दे कयनानि मुसुङो जिनि खार्चि तेरो थाङै दियैनानि बागै जिनि त्रिपुरानि जे लुकुरकनि बागै दियैनानि बागै बेलेखिनो हामबाय दाखुनो दिनैनो दिनैनो कथा आरो सालो पहिला मा गोरोंमानि बागै बेलेखिनो हामबाय औ जों जिनि अ सानानि थाखायहिंगाय जिनि दिनैनि खार्चि तेर हाथी बारसाथ' रमुन' जिनि खाफांनि खुगदै जों खोनाखा मियानि जे मताय आबुहिके मोखां सुरिबोहिनि साजागै दङ दे आरो गाति नायै गातिन' जों जे बातिबोहि माने अब बाति जागैखे दिनै टुकुरिनानि बागै मिया गातिबो थाङै गाति सायै गातिबो तैन' बाति जाखा जे दिनै मतायन टुकुरिनानि फायजांनाय होनाय हेलो
1: हेलो बाय
0: दाखुनो लामसगो बेलेखिनो हामबाय खार्चि तेरनि बेलेखिनो खाका हाम दे हामजाक मुं याफारो औ बेलायखिनो हामबाय दाखुनो बेलायखिनो हामबाय औ दाखुख ब्रिजेस बसारखा आव अबाहायनो जों केबो केबो दङ दादाक सिदाक थांमाया आगिनि जराव थांगा फियाबा दादाक सिदाक थाङै नायमालिया बरकनि

जरा जिन बुख कनिका रेचापुंग खाने को हेलमान बीनी खाना तकसाकमानी रेचापुंग खाना लाइक गफादी तबुको जरा हाई नाइलफिने एस एम एस सबता मुसीहरका सिहरनेका आनी सिनीमुंग अंका साधन देवर्मा आनी कामी तकसा कामी आनो बाई माथिया खरांग अभिषेक मनीषा विपाशा सकांग बाई रेचापचा अंके माथिया खरांग रेचापुंग खाना हिनी कहरका ताकुक साधन देवर्मा अंके फायदी खाना लाइने जरा बीनी खाना तकसाकमानी रेचापुंग तेजो तुम्हारे के नरको खोनानि खोनाथ तक रेचापुंग गे दिनैनि सिमित' मोदाइची ब्रै जेंगिनो थांगा गे बाक्साबा अजरा रग' बायनि रग' बेराय थंखोना मोदाइ रग' खुलुमना थांजाक ओंखोना हायादा गोबांखौ बरग रं गे फायदि अजरा खोना लायनाय दाखुक सादनि खोनाथक जाकमानि रेचापुं दाखुक सादन खोनादि अनिनि खोनाथक जाकमानि रेचापुं जथ' मारे गेजेंनि संनो रग' खोनादि बिनि ओंगै अखोनाथ तक रेचापुं

गेफादि हजराव जों हानोहाय रेचापुं खनानानै बखा थांनाय गे पुलाव नसाना मुचुंग थासिंगो खरक्सानि रेचापुं ताखुग रबिन्द्र जे रेचापुं खनाना हिनि क हरका फियाबा आबो चिनि अलक्रै आं खनारि मानग्ला हायनि बागै नन नाखार सानजौ गेफादि हजराव ते खरक्सानि नायनाय हजराव सेहनाय का पुंकाहाम आं बे क्वार्जोलानि ब्रिजेस रेचापुंनि कक थाय अंखा ओमाथिया आंले मनदेवी जमातिया दुलाल बाय रेचाप जाक हामबाय बाय गै अमाथिया अरेचापं खाना हेनि गय हरका ताखु ब्रिजेस नके बिनि खनाथक जाकमानि रेचापं जों ताबो खाना लायनाय सारासा पॉइंट अक मेगा हर्स एफएम उज्जैन दो खनाय दंदि लगि दंदि।

गेसिं खाने रचा मुंबांदा उखना लाई दोंगो खना तो तोगर रचा पुंगरो के फाइदे और जरा वो ताबुक नाई लाई ने ताबुक जोरा अंका ताबुशन जोरा कोक ब्रोक कोक तो मापो बाक रोक तमरो तों नाई ननी राष्ट्रभक्त रोक द्रुपदी मुन्मो मिया उत्तर मेसिडुनिया नी एसेंबली स्कूप जेटो कोक नारकना थांगे ओ हाक्तर नो बारो तो नांकुकमा चुबा रनाई हाक्तर हनै खुरसाका मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदी हाक्तर गनांगै थिनांगो आमजोपुंनि गांब्लाय केसे केरें ओंमा हाय पाटिमुं नो कासुनाव ग्रोंजाक बेबाक बखाकनि चुबाचु रना कबकमुं नारखा नखा सालस्नि रमै खारचि मुताय तेय तेर तिरिनिसिमि कचाम आगरतलानि चिब्रै मान्डप जेंजाखा आबुन रगै संसजाक बानिकनो चेंगै रखा मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा केन्द्रनि ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत ने पुला डेंगू टीका हाथियों कारीना ने घोषिमुंग रचाखा अब हक्तों ने पुला डेंगू टीका बिलुनिया ईश्वरचंद्र विद्याशागर

नाइटे नाइटे पाइथागो नजरा फायसपाय गया फायदी हजराव पाइथाग रोजाबमुं जों खोनालायनाय रोजाबमुं अजराव खोनानाय हिनिखौ हलका फुंखा हामबाय आं सिमनानि चित्त आनो जिर' कुमारनि गान थाइसा खोनारिदि हिंखे रोजाबमुं तो खोनारिदि हिनि साहरका ताखौ जिर' कुमारनि फियाबाबो रोजाबमुं साहरलिया हिंखे आंबोनाव रोजाबमुंनो खोनादोसिनाय खाख्लायाव रोजाबमुं नों खोनाथगजागोन ताखौ चित्त खोनायनायदि हिंखे जथ' खोनायदोंनाय ताखौ कुमारि गिजिं सं नरखौ खोनायनायदि अ रोजाबमुं हिंखे अ रोजाबमुं पाइमानि यागुल' हिंखे जों खोनालायनाय थुमनुक हिंखे नरख पान्दा जया उइन' दिबनि दामनै दामै सती थामजि जरा खोनायदों दि दै लगिदों दि अजराव स्टुडिय' आसुग जागां आरजे बिनता

0: मग सुमई दोंग तुमसे वो दो ताबो क्यों फेंक सोने की सा साइक नाम वाला प्लेस वाले
1: तीन ही लिया अंगनों जरावन छावन ये कोता शेर क्लास में जरा संग थांगन
0: जो लेक चले नंग आने बखाने कोंगनों ता किसे बनो वन सोई ने लिया निने कोंगनों खाने ऐसा अंगने माइंड कंसेंट्रेट खाई समान लिया हुई तो का क्लास वो थांगे वाह है ना आसू हुई तो वो ना सीमी सॉन्ग सो किसे बनो ब्रेन रोग वाक्स खेले जो ले प्लीज तो
1: नंग ले ओपो रोनो खाना बगे ताम से आसे एक्साइटेड था बा खाना खाए बत्तिया बसेंगा ना मिले
0: ताम हमारे को आसे किरमा संसा कौक बानी कहाँ हमने दे आने हमें नहीं आप उस सीमा ना दो प्लेस आसे दे
1: हम ही या कहाँ हम ना
0: कहाँ
1: बेलाय से कहाँ नहीं शिमिया सीम कुने ने बागे ना कहाँ
0: नंग ता आसे कुतुने ने बुरे दागों ताबुक साइगे साया प्लीज बोपुरो साना आप उस सीमा ना ना आसे दे
1: नंग बो कौन खेर ना करिंग या खना शासा तो गए नंग ने हरो पार को फाय दे आप उस शावन
0: बोझरा
1: शारीरिक निशान जरा फायदे
0: कुबे कोई ना खाबे ना कोर खाना बले तब बले
1: हाय नंगा ना पुचुसे है दुबा
0: चाहो बेलाई खातों में निबिसिंग ती साझा खाता
1: उनका आसुम को हिंदी नंग क्लास थाई दा
0: ओ ओ जोरांगा ना खाबले
1: हिंदी
0: था कौन हिंदी
2: ठीक अब तो उतारो खेमान
3: Borong amu to bising selain bising ke hagru hagru.
2: Kay bunut ini tamu, seprak ki bising tamu. Poni,
3: sija bokrok. Amu no nim bokrok kun kiri le sija gu.
2: Kay amti mang kuna no.
3: Kena kena ka, borong ni ko. Borong kena salsa tungui no. Jeba kaisa, diso nahlai manu.
2: Amu tak tamu kay nai.
3: Kena di, sadi. Seng tabu, jasa kay pano bono suak ma kena.
2: Bunyi yang kai?
3: Hei, jaya sekarang jadi bunuh mak kanai. Usang cengki saya kani bunuh loy kaya deh ba. Bunuh bayi kai, uang kena bunuh mana nak ni dah. Cheng, kanadi, anu nak ham ke budi ni?
2: Sadi.
3: Cheng, kanas salsa tunggu. Nehru parkot langgu. Bunuh punggah siri siri no, langgu cuak mak kanai.
2: Kolej tu tanya sen.
3: Ah, dina sen kolej tu tanya.
2: Tanya.
3: Bunuh खानीमांग खानीमांग जंकीचा बाल्थे मान उनैटा बनो सिंबीसी खान खानी वई बनो फेगरी वई खिकलाय कामनाय
2: काय
3: हिंगा काय नो जोरांग खाकाय जोली फाइनुक फाइनाय जोली फाइनुक फाकाय नो

आसल जरा खाना क्या जरा नंग तमुखा ओ थमनक पायथाग बखा ओ थमनक खलानी रखा रुहि देव बर्मांखा मास्टर बिमल देव बर्मांखा बामराय फ्लोरा देव बर्मांखा बामरानी बिहिक जयंत जमातिया आंखा बयार तुहिन देव बर्मांखा डॉक्टर सुभाष देव बर्मांखा जीन रीना देव बर्मांखा जुली जोएल संजीव देव बर्मांखा जुआंग तई पार्थ रूपिनी खा पियन आशोक जरा खनाबाख्या जरा नंग तमुखा उत्थमनक पायथाक बखा उरुहि चंद्र देव बर्मानी सैजा तबुक खनाबाइन जेसमिन देव बर्मानी रजामुना

नरखनाय थंगो सारासा पॉइंट डॉक मेगा हार्स एफएम उजेंतो सारा स्टूडियो आसुक सगांग आरजे बिनोता गासक जराते सिंखना लाख्या एफएम उजेंतो थुमनु खाखलाय नरक जतन एनजे खेकना थुम रक नर खनाओ इंगाय ताबुक जों दाल बिदाल पांदानो जेंलायने इंगाय हायनो हायनो रक जतन न दिपर काहाम तेन रक नि तिनिनि साल जतनि बागैनो काहाम लायनि इंथुन इंगाय सिं जतन सायमानो तिनिनि सिमि जेंजाखा चिनि चिब्रै मताय मताय रलायमानि ते हारो हाप्ता गायसायबा सालसिनि रमै देरबो उंगै दङ ताबु ओंखाय बेलायनो बरब बांखोना हायनोमा दङ ओंखे बाक्सा अजरारखबा सगैजाक ओंना जों जतन अमाहाय जिब्रै मताय सालसिनि रमै जेफुरु रोजागो आफुरु सिमिन मताय जिब्रै न गारिवै मताय रोजागो तै मिया सानजारखन मताय रखन दैतुकुरि जाखा मताय रोजाखा तै अबहाय केन tong thok tok ni mishin tui o jora bishiwo washa zung manu ngkai o jora roko jotono thanggui kulumu yo zung mudai kulumu shakman kaham tong nani bagay nok nukungi bora rokno kaham ke tong nani bagay zung diay mong shanu zung joto

जोङो जेराव दाल बिदाल पान्दाव दाल बिदाल रोजा बुंखानालाय दङ गावगुलते हिन्दी रोजा बुंखानालाय दंलायो जों ओंखाय जों जतनसिउ दिननि सिमितमथाय जिब्रै चेंगिनो रोजाखा साल स्निनो मुयेबा हाप्ता खायसा रमै चलिनाय मुथाय दुमंते तेरब ओंखाय जों जतन खुलुमनानि बागै थांलायो बिसेव वायसाते जों अमाहाय हाप्ता खायसा रमै जे चलिमानि मुथाय जिब्रै जेंजागो आफ्रुनो चिनि जे जिब्रै मुथायनो आरो मुथायनो गो तनि जागो एबा जों जिब्रै मुथायनो नुगु होनै मानो आबुनि हायनो जरानावगो जों आरो थाङै मुथाय रग्रि फानो जों मुथाय जिब्रै न' गारिजाग नुगिया जों आरो खुलुमै सिमिनो मा फायो फियाबा दिनैनि सिमि ओंखायथ' गारिजाग खायनो नुगौ मुथाय जिब्रै दंमानि ओंखाय आबुनि बागै न' अ साल न' अ जरा न' देबो ना सिंलायो दामनि हेंखे जों नुगैमानो हायादेबा ओंखाय नायनायनि बागै थांलायो बाक्सा गोबां मा बर' रग बिसि बुरुं बुरुं थांनायबो दङ फिया बाक्सा नुगियाखौबो दङ हायादेबा बाक्सा रमदि जेराय रग गोनां रग ओंखाय थांमाया एबा बाक्सा बोसा रगनो फुनुंना बागै गोलांग' बोसा बोदै रगनो फुनुंना बागै दै जों फुनुंनानैबो नांगौ दामनि हेंखे अबाव ओंखा जिनि सिरि सिरिनि गायसा मोदाय होनै जों बालायफायो बयदख्लायफायो जों जिनि लाइबुमा रोगजाग होनै मानो दै जिनि मोदाय होनैबो जों खुलुमै फायलायो ओंखाय जों सिना नांगौ सायमाना नांगौ दै फुनुगैना नांगौ ओंखाय जों फियाबा अर' जों बायसाबो खाख्ल' जों मोदाय खुलुमनानै थांगुनो फियाबा जों जतन' सिब' गाहामनि लगि हामियाबो दङ दै जों अबनि बागै जों मोदाय खुलुमना थांगा हांखे जों साखबाय थांन' हजाखैबो तनिना नांगौ दामनि हेंखे बर' गोबां ओंगौ दै लामा रग' बहायन' लामा रग' मालखुं गोबां ओंखाय जों थांब्रु रग' मालखुं रफाय फाइ रगो दा थुदायनो आबो रगो जों खेल खायनो नांगौ दै हजाब दंनो नांगौ आबोनो गारिब जों दाबुकनि अजरा ओंखा जों डिजिटेल होनै जों जतन' खाब्रमैद' दङ जों थांलाय दङ फियाबा सामुं सिद्रा थांनाय रगबो अबहाय रगो होंखा ओंखाय एबा अबहाय बानि रगो होंखाय बांगुनो होनि मानो बबहाय ओंखाय जों गोबां मा माने खोनै खगजाग मानि रगबो जों सायमानै दङ नुगै दङ दे सालब्रुमनि कक्टमा रगो जों मानै दङ ओंखाय अमाहाय तेर रगो होंखा ओंखाय तेबो बांगु ओंखाय जों अजरा रगो होंखे जों मोथाय दरैनानै जों थांगुनो नायना थांगो बेरायना थांगो सारिक रग' हर रग' थांगो ओंखाय अजरा रग' जों सागबाय थांबो गिसा हजाखै मा दंलायनाय दामनि हेंखे मानि रग खगजाखनानि आब' आयं बोखाग जे दै खगजागिया दै आब'नि बागै जों हजाग दंना नांनाय दै जों थांनानै हेंखा ओंखाय जों सावै मान' दाबो सातुं दंमां न' आदम सावादै रग' वाय रुव ओंखाय जों साथि रगबो लगि तलांनो नांगौ दै जेराय रगन'

मैं तेरी हो गई, तू मेरी हो गया है ता दो दो दो दिवर का हम ननो बेलाय हम बाय कोक दुख ते क्रमा बागे आ मन खाता खूब बिशुराय रचा मन खाना ना हिने कोई हरखा अ जरावो इज्जत के रोती तो के नि रचा मन मैं तेरी तम सका मैं तेरी हो गई तू मेरी हो गया और रचा मन हम के नाय नाय तंखा का तो अंक ना रे नाय इनके न रखबो ता खूब बिशुराय हाके मिनी खाना तो जाक मानी रचा मन खाना ना हंके तम खलाइना नंगलाय हंके सालब्रु नुचिनी बांदा खनाय तंगनाय रंग नरक तो सावी नमन तम खलाइना नंगलाय खलाइना नंगलाय कक दुख तो मंगनो तेरी नपुला चिनी बांदा खाना का हंके रचा मन खाना ना बागै कक दुख खलाइना नंगलाय सिनोरन कक दुख नंबर 0381232 6253 ओ कक दुख नंबर ओ कक दुख खलाइ साहर दि बोर रचा मन खाना ना हंके नाय नाय ताखु खाना ना हिनि कहर मानी ताखु बिसुराय खाना ना हिनि कहर मानी ओ रचा मन तरा तंग नाय नाय तंग का खाना रनाय

अंके बुखु कनिका खाना दिनी निखरा तक सक माने रचा मंग ते ओ रचा मंग पाइन ओ चं जिनी तिनी नि पांदा न पानी लाइने खाना नहिनी को हलका तोता मेरे तोता आस्का गंदारास ओतो के नि रचा मंग आके ओ रचा मंग पाइन चं नरक नि हमजक मा चिनी खातु मा पांदा न पानी लाइने जतन न बेलाइन हम पाइन ते जे कोक दुख मान लिया रोग हम बर खाता बायदि चं जतन सायमान स्रांग साल ब्रुम ब्रुम न नरक नि हमजक मा चिनी खातु मा पांदा गो ते तांग सालब उंगो गाय जेबा सालसा तो माननाय बले ना हाबा हायके वान सगिनो नरक चिनी पांदानो खनाय दंदि ते लगे दंदि हायसिं के पाइथाग रुचा पुंग नरक नि हमजक मा चिनी खातुमा पांदानी

रखनाय थांगो 101.6 मेगाहर्ज एफएम उज्जैन तो जरा स्टुडियो आजुक जाकांग आरजे बिनोता गता बुचिनि स्टुडियो नि जरा खगो तामै थांगो दिपुनि दामनै तामै सतिनि इंगे मुफ्लि चारंग जाकांग का जरा अनुरोध जतन न हेनो हेलाम सबो खना त खरांग पांदाओ ते जतन न सानानि मुचुगो नरक नि तिनि निशाल जतनि बागे न काहाम लाइनानि इंथुन गय जों खना त खरांग पांदाओ खना त ब्रचा पुं जों खना लाइनाय ते जतन न पाइपलाइया हामबाय सालब्रुम न चिनि पांदा न खनाय थांगमानि बागे जों न लगिरि tongmani bagai obahai keno narok jengno logiri tongdi jengbu je mansak sai tongo narok ni khatong jak mani re chamung lo khanari oi phana narok ni khana tong thogri de mano abahai ke sing je mansak chai de go hunkai sing siwo tini to tini ni simi cheng jaka chipri matai hunkai abona tei no cheng kebang ko ko sai tong layo hunkai cheng chipri matai o cheng jotono berai layo tong thok layo hai de bana hunkai cheng o jorang kha belai no tong thok ni jora bisyo waisa phayo ba jotono tong thok nani bo nango hai da jing tong thok

हजार बार सोचा कह दूं कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ऋषिकेश मुखोपाध्यायर सिनेमा आनंद। बड़ पर्दा एक संगे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, कैंसर आक्रांत चरित्र अभिनय कर राजेश खन्ना। तार संलाप, बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लम्बी नहीं। सिल्वर स्क्रीने भरपूर आवेगर मध्य सिनेमा के अन्य मात्रा दिए मुकेशर वॉइस टेक्सचर, सलिल चौधरी सुर एवं जोगेशर लेखा गान कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। श्रोता बंधुरा, गान आमादेर सुख दुखेर संगी होते पारे, मन खराब निमिषे दूर करे, मन भालो राखते पारे। आर तार जुने तो हाल फिले जनप्रिय हुए म्यूजिक थेरापी, आर एर जुन्न दावाई हिसेबे मुकेशेर गान किन्तु आपने बेचे नीते ही पारें। बर्षार दुपुर होक बा रातेर बृष्टि, संगे जदि थाके चंदन सा बदन, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, मेरा जूता है जापानी, किंबा आवारा हूँ, ये सब गान ताहुले मन भालो तो थाकबेई। श्रोता बंधुरा, ये आशा रेखे मुकेशेर प्रति श्रद्धार्घ्य जानिए मुकेशेर गाने गाने आजकेर शिल्पीर ये पर्व थेके विदाय निच्छि। आपनादेर बंधु आर जे श्वेता, तबे आमि रयेछि आपनादेर संगे अवश्यई परबर्ती पर्वे।

0: समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली।

0: सभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

0: ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।